नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है बुधवार, सक संवाद 1948, श्रावणा महीने की आज सातवीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026, जुलाई महीने की आज 29वीं तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की पहली सभा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य

0: सर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब जान लेते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में यानी कि सुबह 6:10 पर आप आनंद ले पाएंगे भक्ति गीतों का। 6:30 पर आपको सुनवाएंगे महिलाओं पर केंद्रित कुछ फिल्मी गाने।

सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। सुबह 7:05 पर आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। युवा पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 7:30 पर।

सुबह 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए समाचार प्रभात। 8:15 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ देशभक्ति गीतों का। सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिली किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज। 8:40 पर आप आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिली किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

सुबह 9:15 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत गुलजौनली जेते और उनके साथियों की आवाज में। रांगखोल कार्यक्रम के तहत रांगखोल भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:25 पर। गायक कलाकार रहेंगे जॉनी रांगखोल और उनके साथी। सुबह 9:35 पर जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे मिलम भलंग प्रिंगे और उनके साथियों की आवाज़ में। सुबह 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम के अंतर्गत ब्याते पारंपरिक गीत आप सुन पाएंगे छोंगपुया दारने की आवाज़ में।

सुबह 10 बजे से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम के 5 बजे तक। लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

श्रोताओं का पालन ले रहे थे भक्ति गीतों का। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के सफर को। और सबसे पहले सुनते हैं हार्टलेस फिल्म का ये गीत, केके की आवाज़ भी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आफ्रंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

0: भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
2: हेलो, आई एम साक्षी एंड टुडे आई विल बी रिसाइटिंग अ पोएम नेम्ड इफ वंस यू हैव स्लेप्ट ऑन एन आइलैंड बाय रैचल फील्ड। इफ वंस यू हैव स्लेप्ट ऑन एन आइलैंड यू विल नेवर बी क्वाइट द सेम। यू मे लुक एज यू लुक्ड द डे बिफोर एंड गो बाय द सेम ओल्ड नेम। You may bustle about in street and shop. You may sit at home and sew. But you'll see blue water and whirling ghouls wherever your feet may go. You may chat with the neighbors of this and that and close to your fire kit. But you'll hear ship whistle and lighthouse bell and tide spit through your sleep. Oh, you won't know why and you can't say how such change upon you came. But once you have slept on an island, you'll never be quite the same. Thank you.
1: रीगल वैली हाई स्कूल के छठी कक्षा में पढ़ने वाली साक्षी जेमी की जुबानी आपने सुनी है प्यारी सी कविता। आइए अब जानकारी देते हैं आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में।

श्रोताओं, आज 29 जुलाई है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। जानेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने 1858 में हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन, आज ही के दिन भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना 1876 में की गई। मोहन बगान ने 1911 में आईएफ शील्ड पहली बार जीता। आज ही के दिन ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना ने की शादी 1981 में हुई थी। आज ही के दिन, आज के दिन वैज्ञानिकों ने 2007 में एथेंस में प्री हिस्टोरिक पीरियड के हाथी के दांत की खोज की। श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में से एक जेआरडी टाटा का जन्म 1904 में हुआ था। आज के दिन, आज के दिन संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव रहे डेक हैमरशील्ड का जन्म 1905 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म 1931 को हुआ था। आज के दिन, श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन वर्ष 1891 को हुआ था। आज के दिन,

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा असफ अली का निधन 1996 में हुआ था। आज के दिन भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन वर्ष 2003 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी कवित्री स्नेहामयी चौधरी का निधन 2017 में हुआ था। आज के दिन श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

श्रोताओं, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के दौरान हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य बाघों का संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना तथा अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी को रोकना है। बाघ हमारे जंगलों के पर्यावरणिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, जो विश्व में सबसे अधिक जंगली बाघों का घर है, प्रोजेक्ट टाइगर और विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इनके संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। वर्ष 2026 की थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट, अर्थात स्वदेशी जनजातियों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य का सुरक्षित बनाना। ये विषय इस बात पर जोर देता है कि जंगलों के निकट रहने वाले जनजातियां और स्थानीय समुदाय बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भागीदारी है। उनका पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति के प्रति सम्मान और सक्रिय सहभागिता से बाघों तथा उनके प्राकृतिक आवास की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

श्रोताओं, आज के दिन को अक्षरी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। असर मास की पूर्णिमा को अक्षरी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तथा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में ये पर्व 29 जुलाई को यानी कि आज के दिन मनाया जाएगा। ये दिन ज्ञान, शिक्षा, अध्यात्म और गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन माना गया है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महर्षि वेदव्यास का जन्म इसी तिथि को माना जाता है। वेदव्यास ने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की तथा 18 पुराणों का संकलन का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उनका अतुलनीय योगदान के सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थी, शिष्य और श्रद्धालु अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तथा उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अक्षरी पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, अनुशासन, संस्कार और जीवन मूल्यों के उत्सव भी है। इस अवसर पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, महर्षि वेदव्यास और अपने गुरु का स्मरण करते हैं तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि गुरु का सम्मान, ज्ञान का आदर और सदाचार का पालन ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है।

श्रोताओं, आज के दिन को अरुणा असफ अली की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी सेनानियों में से एक थी। उनका जन्म 16 जुलाई 1909 को कलका वर्तमान में हरियाणा में हुआ था तथा 29 जुलाई यानी कि आज के दिन 1996 को उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन देश की आज़ादी और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी साहसिक भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। जब अंग्रेजी शासन ने आंदोलन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, तब अरुणा असफ अली ने मुंबई के ग्वालिया टंक मैदान, वर्तमान में ऑगस्ट क्रांति मैदान में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन का नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली ने अनेक कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की कई प्रयास किए, लेकिन वे लंबे समय तक भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन करती रही। उनकी निर्भीकता, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति ने उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया। इसी कारण उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की न्यायिका तथा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भी वे सामाजिक कार्य, महिला सशक्तिकरण और जनसेवा से जुड़ी रही तथा दिल्ली की पहली महिला महापौर यानी मेयर बनने का गौरव भी प्राप्त किया। अरुणा असफ अली के राष्ट्र निर्माण में योगदान को देखते हुए उन्हें अनेक सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें पद्म विभूषण 1992 और भारत रत्न 1997 मरण प्रणत प्रमुख है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके अद्वितीय साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि सत्य, स्वतंत्रता और न्याय के लिए दृढ़ संकल्प और निडरता के साथ कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है।

श्रोताओं, आज के दिन को जेआरडी टाटा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हर वर्ष 29 जुलाई को यानी कि आज के दिन भारत के महान उद्योगपति, दूरदर्शी विचारक तथा भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक जहांगीर रतनजी दादा भाई यानी जेआरडी टाटा की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म

29 जुलाई को यानी आज ही के दिन 1909 को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और उन्होंने वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। उन्होंने अपने नेतृत्व और नवाचार से भारत में उद्योग, विमान तथा तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान की। जेआरडी टाटा वर्ष 1938 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप का विस्तार इस्पात, ऑटोमोबाइल, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी और अनेक अन्य क्षेत्रों तक हुआ। वे मानते थे कि किसी भी उद्योग की वास्तविक सफलता तभी है जब उसे देश और समाज का कल्याण हो। कर्मचारियों के हित, गुणवत्ता, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का उन्होंने सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी दूरदृष्टि और मानवीय सोच ने उन्हें भारत का सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक की स्थान दी। राष्ट्र निर्माण में उनके आधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1955 में पद्म विभूषण तथा 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका जीवन हमें कड़ी मेहनत, उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती केवल एक महान उद्योगपति को याद करने का अवसर ही नहीं, बल्कि ये संकल्प लेने का भी दिन है कि हम ईमानदारी, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज के दिन की विशेषताओं के बारे में। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। जाते जाते आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपकी गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: आइए आरंभ करते हैं युवाओं पर आधारित कार्यक्रम। आज के युवाओं पर आधारित कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे एक खास बातचीत लिदिस जानमे के साथ। विषय रहेगा इस फ्रॉम ए सिंपल हॉबी टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अंकिता पॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा युवा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने और नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक यंग कंटेंट क्रिएटर मिस लीडिया जानमे, जो पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में भी अपनी एक अलग पहचान बना रही है। तो चलिए हम बाकी की बातचीत हमारे अतिथि से जानते हैं और शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर टुडे। So basically, starting with my introduction, my name is Lydia Zanmay, the creator behind Food Snap by Lydia. I'm also a final year social work student currently pursuing my bachelor's in social work, that is from Royal Global University, Guwahati.
0: जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दिया है हमें। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप जरा ये बताइए कि अभी तक जो आपके बचपन से लेकर आज तक की जो जर्नी है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आकाशवाणी हाफलॉन्ग फॉर हैविंग मी हियर। ऑनेस्टली ये भी मेरा एक बिगेस्ट अचीवमेंट है कंटेंट क्रिएटर का कि मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। सो अगर मैं मेरा जर्नी लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं बोलूँगी कि आई वॉज समवन जो मैं आई टुक माई लाइफ नेवर सीरियसली। मैं अपने लाइफ को कभी सीरियसली नहीं लिया, मुझे कभी पता भी नहीं था कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, जस्ट मतलब गोइंग विद द फ्लो। एंड देन लाइक वन डे, नॉट बेसिकली वन डे, इट वॉज मी लाइक समटाइम्स मैं कभी कभार कुछ बना दी थी घर पे। आई थिंक द फर्स्ट मोमेंट इट वॉज माई पेरेंट्स जो हमेशा कुछ चीज़ मैं बनाती हूँ तो टेस्ट करता है, एंड वो लोग जब कोई चीज़ मैं बनाती हूँ वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, देन इट वॉज वन स्टेप कि मैं हमेशा मैं खुद को थोड़ा आगे बढ़ा पाऊँ। तो ऐसा करते करते मैंने देखा कि मेरा कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं धीरे धीरे उसमें थोड़ा काम करने लगा। मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ तो ऐसे दोस्त को खिलाती हूँ या फिर अपना पेरेंट्स को खिलाती हूँ, सिबलिंग्स ऐसे ही चलते रहा। सो लाइक आई वुड लाइक टू से और डिस्क्राइब ये करना चाहती हूँ कि समटाइम्स द पैशन विच वी हैव नेवर टेकन सीरियसली विल बिकम द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, इट विल चेंज आवर लाइफ, दैट्स ऑल आई वांट टू से।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अभी आप जरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है और अभी आप क्या कर रही हैं?
1: मैंने फ़िलहाल तो क्लास 8 तक सेंट एग्नेस से किया था, उसके बाद में सेंट्रल पब्लिक स्कूल से मेरा मैट्रिकुलेशन किया है। उसके बाद अभी फ़िलहाल में मेरा जो बैचलर्स है वो मैंने जैसे कि बोला मैं रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल मैं फाइनल ईयर में हूँ। मेरा लाइक अभी इंटर्नशिप चल रहा है हाफलॉन्ग पे, तो वही है अभी फ़िलहाल में।
0: जी, मतलब आप एक बैचलर स्टूडेंट के होने के साथ साथ अपना इंटर्नशिप भी चला रही है और आपका साथ में ये आपका जो कंटेंट क्रिएशन का पेज है वो भी चल रहा है। जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक जैसे कि आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इसके साथ साथ आपका इंटर्नशिप है, तो इन सब के बीच जो कंटेंट क्रिएशन का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ है आपका?
1: एक्चुअली मेरा सफ़र इट वॉज़ वेरी अनप्लान। मेरा कोई मतलब प्लान भी नहीं था कि, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन कंटेंट क्रिएटर बनूंगी या फिर मेरा लाइक कंट्रीब्यूशन रहेगा इस फील्ड में। बट देन एज आई हैव सेड दैट आई लव कुकिंग एंड ऑल्सो जब भी मैं कुछ बनाती थी तो मैं कहा था कि शेयर करती थी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, उससे ज़्यादा तो मेरा कोई पेज था नहीं या फिर मेरा कोई चैनल था नहीं कि मैं वहाँ शेयर करूँ, तो मैं हमेशा व्हाट्सएप स्टेटस पे कभी कभार शेयर करती थी। देन इट वॉज माई फ्रेंड्स, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो पेरेंट्स तो पहले एक्टिव नहीं रहता है,
0: बिल्कुल।
1: मेरा फ्रेंड्स लोग था जो हमेशा मुझे बोलता था कि यू शुड ओपन अप अ पेज वेयर यू कैन शेयर ऑल दिस, बट देन मैंने बहुत पहले तो ऐसा कभी सीरियसली लिया नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं क्रिएट करूंगी। बट धीरे धीरे माई फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव, वो लोग मुझे हमेशा पुश करते गया कि खोलना चाहिए। देन आई डिसाइडेड वन रैंडम डे आई डिसाइडेड टू ओपन अप अ पेज, देयर शेयर सम फ्यू फोटोज ऑफ माई लाइक कुकिंग। तो फिर उसके बाद बीच में मैं थोड़ा रुक गई, उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे पोस्ट करने लगा फिर से फोटोज। तो
0: जी जी
1: मैंने फिर एक दिन वीडियो सोचा कि डालना सही रहेगा. तब तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आता था. फिलहाल अभी भी कुछ अच्छे से एडिटिंग तो आता नहीं है. बट पहले तो और भी मतलब नहीं आता था. तो मैं कभी कभार पीछे वाला क्लिप आगे डाल देती हूँ, आगे वाला पीछे, मतलब एकदम मतलब कुछ फ्लो में ही नहीं चलता था. बट धीरे धीरे मतलब मैं पोस्ट करने लगा तो फिर मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. तो ऐसा धीरे धीरे मेरा लाइक थोड़ा तो मतलब इम्प्रूव हो गया. ऐसे करते करते फिर मेरा पेरेंट्स को भी पता चला कि मैं मतलब पोस्ट कर रही हूँ और मैं मतलब ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ. तो उन लोग ने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक लाइफ में एक एक्स्ट्रा करिकुलम होना बहुत ज़रूरी है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मेरा फ्री टाइम में वो चीज़ को मैं यूटिलाइज करूँ. तो मैं हमेशा जब भी मेरा फ्री टाइम मिलता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ शूट करती हूँ और मैं पोस्ट करती हूँ.
0: जी जी, ये बहुत अच्छा है कि स्पेशली अभी के टाइम पे एक एक्स्ट्रा चीज़, एक एक्स्ट्रा स्किल होना बहुत ज़रूरी है. जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की थी, शुरू शुरू में हर किसी को फैमिली और फ्रेंड्स का आपका रिएक्शन कैसा था?
1: पहले तो मतलब ये जो पेज है ये मैंने मतलब मेरा विलिंगनेस से तो नहीं खोला.
0: जी जी बिल्कुल.
1: इट वाज माय फ्रेंड्स, एज आई हैव सेड, दे हैव सपोर्टेड एंड आल्सो माय पेरेंट्स हैव आल्सो ऑलवेज सपोर्टेड रिगार्डिंग दिस. तो उन लोग से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला. और जैसे पेज खोलना गया, रैंडम पीपल हैव आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट. हाँ, वो बात जरूर है कि नेगेटिव लोग तो होते ही है, वो आपको जरूर पीछे आने के लिए खींचना जरूर कोशिश करेंगे. बट देन उस चीज को इग्नोर करके आपको मतलब अच्छे चीज में फोकस करना चाहिए. आपको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे उस चीज में ग्रो कर पाओ. तो आई थिंक ना, नेगेटिव चीज से भी आपको कुछ कुछ सीखना चाहिए, सो दैट इट हेल्प्स यू टू ग्रो. तो आपको उस चीज से आपको बहुत सीख भी मिलता है. तो ऐसा करके धीरे धीरे आप आगे जा सकते हो. कोई भी चीज इंस्टेंट तो चेंज नहीं होगा या फिर जल्दी से तो वो चेंज कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं आएगा. बट देन ऐसा ही धीरे धीरे आप कुछ भी करो तो खुद पे विश्वास रखो. सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले आपको कोई और सपोर्ट करे वो जरूरी है कि आप पहले खुद को सपोर्ट करो. सेल्फ सपोर्ट आप पहले खुद को दीजिए, सेल्फ बिलीफ भी रखिए. आप ऐसे ही धीरे धीरे आगे जाओगे. एंड सपोर्ट की बात, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एनफ दैट माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एवरीवन हैव सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस गोइंग जर्नी. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन, आल्सो माय ऑडियंस हु इज एनकरेजिंग मी टू पोस्ट सो मच एवरी डे.
0: जी जी, तो जैसे आपने हमें बताया है कि नेगेटिव बातें लोग बोलते हैं या फिर नेगेटिव जो चीजें हमेशा हर फील्ड में होती है, तो उस सब चीज ने क्या आपको इम्पैक्ट किया था थोड़ा बहुत?
1: थोड़ा बहुत तो होता है. मैं जितना भी बोलूँ कि नहीं किया, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे जब आप मतलब एकदम न्यू हो इस फील्ड में तो थोड़ा तो मतलब कोई अगर कुछ बोलता है तो थोड़ा सा तो हिचकिचाहट होता है. बट देन ऐसे ही मतलब वो आपको वो साइकिल जो है, ये वॉल जो है आपको ब्रेक करके आगे जाना बहुत ज़रूरी है. देन ऐसे ही मतलब पहले तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा होता था. बट देन अभी मैं जैसा तैसा ये सब चीज़ को मैं इग्नोर करके आगे जा रही हूँ तो वो सब चीज़ अभी मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता.
0: जी जी, ये लाइफ का एक पार्ट है, यही हमें ग्रो करना सिखाता है. जी, तो आप ये बताइए कि जैसे आप इस फील्ड से जुड़ी हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे अभी के टाइम पे ना बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ टाइम पास समझते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस फील्ड को किस नज़रिए से देखना चाहिए?
1: हाँ, आई थिंक ये चीज़ जो है वो टाइम पास नहीं है. एंड आवर यूथ्स स्पेशली वेरी स्मार्ट एनफ. उन लोग के अंदर बहुत सारा स्किल्स है, उन लोग के अंदर बहुत सारा टैलेंट है. आई थिंक वो लोग को अभी तक नहीं पता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है. बट इट्स ओके, लाइक कोई भी चीज़ लेट नहीं होता है. आई थिंक दिस लाइक उन लोग के पास टाइम है फिगर इट आउट. एंड सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट वायरल. अपना नाम, अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. एंड अभी के जेनरेशन में AI जो है हमारा जॉब्स भी खाने वाला है इन फ्यूचर्स. सो अगर आपके अंदर एक स्किल होता है तो आप थ्रू सोशल मीडिया बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप अपना स्किल्स टैलेंट्स को दिखा के आप अपना एक इनकम जनरेशन भी कर सकते हो, आप लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. अगर आप, हाँ, सोशल मीडिया का एक डिसएडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज का ऊपर आप फोकस ना करके उसका एडवांटेजेस जो भी है आप उस पर फोकस करके आपके लिए जो भी बेनिफिट होता है उसको आपको गेन करना बहुत ज़रूरी है.
0: जी, बहुत अच्छी बातें आप कर रही है. आशा करती हूँ हमारे सभी लिसनर्स बहुत इंस्पायर होंगे आपकी बातों से. अभी थोड़ा रियलिटी चेक पे आते हैं हम. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक जब कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के पीछे काफी प्लानिंग और काफी मेहनत होती है, तो आपके लिए एक वीडियो बनाने का प्रोसेस कैसा होता है?
1: लाइक मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज ऐसा कुछ पोस्ट करने का मतलब वो नहीं रहता है. मतलब मैं सोचती हूँ कि सिंपल रेसिपीज, क्विक रेसिपीज, या हमारा जो भी नॉर्थ ईस्ट का लोकल कुजिन है या फिर घर पे हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं उसको मैं शेयर करूँ. क्योंकि वो ऐसे बैचलर्स, जब भी मैं कंटेंट क्रिएशन में पहले आने से पहले मैं भी खुद फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, तब मैं कुछ अगर ईजी रेसिपी, क्विक रेसिपी देखती हूँ तो मेरा भी मन में आता है कि ये मुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए. उससे ही मैं इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि घर का कुछ कुछ रेसिपी शेयर करना चाहिए. तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने भी ऐसा शेयर करना शुरू किया. बट देन क्या होता है, वो इजी नहीं रहता है ना. आपको लगता है कि ये 20 सेकेंड्स का रील है, 60 सेकेंड्स का रील है
0: जी.
1: तो बहुत सिंपल होगा, तो बहुत इजी होगा. बट ऐसा नहीं है. आपको उस चीज़ के पीछे आप जो भी अरेंज कर रहे हो, चाहे है वो सामान क्यों ना हो या फिर कैमरा एंगल या फिर आप वीडियो जो भी ले रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट इजी. कंटेंट क्रिएटर इज़ नॉट ईजी अकॉर्डिंग टू मी. तो मेरे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट भी रहता है, क्योंकि कभी कभार मेरा कैमरा स्टैंड नहीं होता है तो मुझे एक हाथ से वो सब्जी भी बनाना पड़ता है और एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ना पड़ता है. तो ये चीज़ पे थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है.
0: जी जी जी
1: बट देन ऐसे ही आप अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से करना चाहते हो, आई थिंक आप कहीं ना तो कहीं उस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स और टाइम निकाल ही लेते.
0: जी बिल्कुल. कोई भी चीज़ को करना चाहो तो उसके लिए रास्ता ज़रूर निकलता है. तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप पढ़ाई कर रही है, इंटर्नशिप चल रहा है, फिर कंटेंट क्रिएशन, इन तीनों में जो बैलेंस बनाना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए?
1: Honestly, balancing all three is not always easy. But I genuinely enjoy both my studies and content creation. Like cooking is something जो इंसान हमेशा करता है, everyday basis पे करता है.
0: जी.
1: So whenever I'm in the kitchen, I try to make the most of the time by recording my recipes as well. कभी कभी मेरा मतलब intention तो फिलहाल अभी है, but most of the time मैं social work background से belong करती हूँ तो मेरा field visit ज़्यादा रहता है.
0: जी.
1: तो उस बीच में क्या करती हूँ कि कॉलेज के बाद में जब भी वापस आती हूँ मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करके मैं टाइम निकालती हूँ शूट करने के लिए. तो कभी कभार अगर मैं थक भी जाती हूँ तो एक मतलब मन नहीं करता है ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है.
0: जी जी.
1: इसलिए जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है आई मेक मोस्ट ऑफ इट. अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं एक साथ दो रेसिपीज भी बना लेती हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन पोस्ट देम वन आफ्टर वन. एंड ऑल्सो आई डोंट बिलीव इन वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम. जो भी टाइम मिलता है आई विल ट्राई टू use it in best possible way.
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि टाइम का वैल्यू बहुत है और उसको टाइम का वैल्यू टाइम पे समझ आना वो भी एक बहुत जरूरी चीज है. चलिए ये जानते हैं कि अभी मतलब जैसे आज आपने हमें पहले बताया है कि कंटेंट क्रिएशन को हर कोई एक टाइम पास के हिसाब से देखता है, अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे कंटेंट क्रिएशन तो सिर्फ एक पेशन नहीं होता है हर किसी का, एक कैरियर ऑप्शन भी बन चुका है अभी के लिए, तो आपके हिसाब से इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो टैलेंट, कंसिस्टेंसी या फिर क्रिएटिविटी, पेशेंस?
1: According to me, or honestly, if I say, I don't think it's just one thing. एक ही चीज़ नहीं है. According to me, talent, consistency, creativity and patience, all of them are important.
0: जी.
1: क्योंकि कोई भी इंसान शुरू से तो परफेक्ट नहीं होता है.
0: बिल्कुल.
1: जब हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं, एवरी वन ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. मैं भी परफेक्ट नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग. लेकिन आप जब कंटिन्यूसली कुछ भी चीज़ करते हो, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लग जाते हो. आपको समझ में आने लगता है कि ऑडियंस क्या पसंद कर रहा है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर आपका किसी भी चीज़ में अगर गलती हो रहा है तो आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल जाता है. तो मैं अगर बोलूँगी तो क्या बेटर है कि आपको मतलब सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए फर्स्ट.
0: जी जी जी.
1: और किसी भी चीज़ आपको इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा.
0: नहीं,
1: किसी भी चीज़ के लिए आपको पेशेंस होना पड़ेगा. आपको धीरे मतलब वेट करना पड़ेगा. आपको उसके पीछे भी बहुत काम करना पड़ेगा. एंड जहाँ तक मैं बोलूँ, अगर पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अभी आप 1-2 मंथ्स करोगे आप कंटेंट क्रिएशन, आप अभी इस फील्ड में घुसे हो, 1-2 मंथ्स क्या है, आपको अभी उतना जल्दी कोई सपोर्ट भी नहीं करता है. इट्स अ फैक्ट. इट्स मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम, एक दो लकीली हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है. तो आपको इस चीज़ में बहुत पेशेंस होना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप अभी किया है तो आपको साथ साथ रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं. आप करते रहिए, अगर आप करते रहोगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा उस चीज़ का. एंड देन वी शुड बी कंसिस्टेंट, नंबर वन थिंग इज़ वी शुड बी कंसिस्टेंट, करते रहना चाहिए. आप अगर ये चीज़ का कंटिन्यू करोगे तो आपको इस फील्ड में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा, बहुत सारा डोर्स भी आपके लिए ओपन रहेगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट अनाफ कि मैं जब ये फील्ड में घुसी तो मुझे लाइक इन माई ग्रोइंग स्टेज, मैं अभी भी ग्रो ही कर रही हूँ, बट देन आई फील वेरी लक्की एंड प्रिविलेज एज वेल कि मैं जब मेरा ग्रोइंग स्टेज पे था, आई गॉट अ वेरी गुड कॉलैप्स फ्रॉम फ्यू फेमस ब्रांड, दैट इज फिलिप्स, स्वर्णशक्ति, जीरा राइस, गणेश ब्रांड ऑयल. एंड ऑल्सो करंटली आई बी वर्किंग विथ 2-3 ब्रांड्स, दैट इज फॉर्चून सोयाबीन एंड गॉडरेज चिकन नगेट्स. सो दे पेड मी वेरी वेल एज वेल. एज आई हैव सेड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एनफ दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बाटर सिस्टम से भी स्टार्ट करना नहीं पड़ा. एंड मैं कभी, मैंने जैसे कि बोला, मैंने ये चीज़ को कभी मतलब अर्निंग सोर्स के जैसा मैंने नहीं खोला. आई डिड बिकॉज आई लव डूइंग दैट. तो फेसबुक में भी मैंने धीरे धीरे पोस्ट करने लगा, देन फेसबुक से भी मुझे पेमेंट मिलना स्टार्ट हो गया. तो उस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेट हुआ है कि करना चाहिए और आगे भी इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. सो आई थिंक वी शुड बी वेरी मच पेशेंस. अगर आपको रिजल्ट जल्दी भी नहीं मिल रहा है देन वी शुड नॉट बी अपसेट, बल्कि हम लोग को थोड़ा पेशेंस रह के उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए. एंड आपको, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में मेहनत भी कर रहे हो तो आपको फल ज़रूर मिले.
0: जी जी, ये जो मेहनत का फल है वो हर किसी को मिलता है हर फील्ड में, सिर्फ इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नहीं, हर फील्ड में पेशेंस रखोगे तो हर मेहनत का फल जरूर मिलता है. आपने हमें बताया है कि आपका जो कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी है, अभी भी आप ग्रोइंग फेज पे हो, लर्निंग फेज पे हो. आपका ये फूड पेज जो है, फूड स्नैप्स बाय लीडिया, ये पेज स्टार्ट करने का कितना टाइम हो गया है आपको?
1: मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है.
0: जी,
1: तो मतलब मेरा 1 ईयर ग्रोइंग स्टेज में भी मैंने बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया है. एक फेस पे मुझे गिव अप भी करने का मन कर दिया था, क्योंकि सोचा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं मेरा टाइम इतना क्यों इन्वेस्ट करूं. बट ऐसा नहीं है, मुझे ये रियलिटी चेक जब मिला, मैंने दूसरे को भी देखा कि ग्रोइंग स्टेज में वो लोग बहुत अच्छा कर रहा है. लाइक इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी मोस्ट ऑफ द यूथ्स हु आर इन टू दिस फील्ड, वो लोग इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. तो मैंने भी वो लोग को देखा तो मैं सोचा कि मैं क्यों गिव अप करूं, मुझे भी ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए. तो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करी हूँ. एंड मैंने बीच में कभी ब्रेक भी नहीं लिया, सोचा था बट मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया. एंड अभी तक फिलहाल आज के दिन तक मैंने अभी तक लिया नहीं है, आई एम कंटिन्यूइंग इट.
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है. ये जो एक बिलीफ है खुद के ऊपर, ये होना बहुत ज़रूरी है. और जैसे आपने कहा है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंटेंट क्रिएशन का, फिर भी आपको जो कुछ कोलेबोरेशन जो आपको मिली है, तो ये सब के पीछे भी कुछ पेमेंट तो मिलता है. आपने कहा है अर्निंग सोर्स से आपने नहीं देखा, फिर भी आपको हुआ है. तो इस फील्ड में जब आपको पहली बार अर्निंग हुई है, उस वक्त आपको फील कैसा हुआ है, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था?
1: इट वॉज वेरी, मुझे तो थोड़ा इमोशनल भी फील हुआ, मुझे बहुत खुशी भी हुआ है. एंड द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट लेवल वॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा था. तो मुझे बहुत खुशी हुआ है जब मैंने मेरा फर्स्ट पेमेंट रिसीव किया था. एक छोटा सा ग्रोइंग फेज में जब आपको मतलब कोई आपके ऊपर बिलीव करता है एंड उस चीज़ का फल मिलता है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव गॉट इन माई लाइफ. एंड इट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग इन माई एंटायर लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड, कि इट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग. तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई कुड डू दिस, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ये कर पाऊंगी या कभी आन इस स्टेज पे ये पेज के जरिए मैं आन कर पाऊंगी. बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एनफ एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, हैप्पी, मिक्स फीलिंग आई हैड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पेमेंट.
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, सच कहने से तो आपने भी एक टाइम पास के तौर पे शुरू किया था, लेकिन उसने आपको बहुत बड़ा एक फल दिया है. तो वो चीज़ अभी आपको एक खुद में एक पहचान बनाने का मौका दे रहा है. मैं जानना चाहूंगी कि आगे चलकर आप खुद को कहाँ देखना चाहती है, कंटेंट क्रिएशन के अलावा, मतलब कोई और भी चीज़ है या फिर इसी फील्ड को आप आगे बढ़ाना चाहती हैं?
1: Like content creation will always be a part of my life because I am genuinely enjoying it. ये करके मुझे genuinely बहुत खुशी मिल रहा है. And also I hope Food Snap by Lydia continues to grow and reaches to more people. But apart from creation, my biggest goal is to connect to my studies. As a social work student, I want to build my career in social work and contribute to society in a meaningful way. मेरी हमेशा से यही wish रही है कि मैं ऐसा ऐसा इंसान बनूँ जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूँ, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हो या फिर हेल्प करने के लिए हो या फिर सोसाइटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन ही कुछ ना हो। आई ऑलवेज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वांट टू पुट अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट टू माई सोशल वर्क स्टडीज एंड माई सोशल वर्क कैरियर।
0: जी जी, हम भी चाहेंगे कि आपकी जो फ्यूचर प्लान्स है सब में आप ग्रो करें, आप अच्छे से अपने फ्यूचर में आगे बढ़िए। बहुत सारी बेस्ट विशेस है आपके लिए। अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे यूथ लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने पैशन को लेकर कन्फ्यूज है या नई शुरुआत करने में हिचकिचाते हैं।
1: सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लाइक डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट एनीथिंग। आज के जेनरेशन में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। हमारे हाथ में फ़ोन है और ये हम पर डिपेंड करते हैं कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं या अपना टैलेंट दिखाने के लिए, सीखना और ग्रो करने के लिए सोचो ए पार्ट। सो अगर आपका भी अभी तक अपना पैशन नहीं मिला है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। हर किसी का जर्नी अलग होता है। मुझे भी शुरुआत में नहीं मिला था कुछ भी, मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट ही मुझे पता नहीं था। बट ऐसा स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब ऐसा स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ। आई थॉट कि मैं कुकिंग में मेरा कंट्रीब्यूशन मैं दे पाऊँगी, मैं उस चीज़ से शायद मेरा कुछ पोटेंशियल है कि मैं उस चीज़ में ग्रो कर पाऊँ। सो लाइक मैं बस एक ही लाइक मैं एक छोटी चीज़ से शुरू किया था, बट आई थिंक आई एम कनेक्टिंग टू मोर पीपल नाउ एंड धीरे धीरे इस जर्नी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एंड मैं आज भी खुद को परफेक्ट नहीं मानती हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड ऑल्सो एवरी डे आई ट्राई टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अगर मुझे लगता है कि यही मतलब मेरा माइंडसेट जो है मैं लाइफ में आगे जाती हूँ, मेरा माइंडसेट में अगर ये चीज़ मैं सेट करके रखती हूँ तो वो चीज़ मुझे पुश करेगा कि मैं जाऊँ। बट अगर मेरा डिस्ट्रैक्शन रहेगा इधर उधर तो मुझे ऑब्वियसली लाइफ मुझे हमेशा पुल डाउन करेगा कि तुम वहीं पे ही रहो। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप पीछे मुड़ के मत देखिए। लोग जो बोलते रहते हैं वो बोलते रहेंगे, बस आपका काम वही है कि आपको आगे जाते रहना चाहिए। लाइक इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए शुरू नहीं करूँगा या करूँगी। नोबडी स्टार्ट्स परफेक्टली एंड हम सब कहीं ना तो कहीं सीखते भी है, गलती भी करते हैं, इम्प्रूव भी करते हैं और वही हमें ग्रो करवाता है। और एक बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी काम में पसंद है, चाहे वो एक नया क्रिएटर या कोई एक्सपीरियंस क्रिएटर, मतलब कोई भी क्यों ना हो, ऐसा क्रिएटर अगर कोई हम लोग नया किसी इंसान को देख रही है कि ये फील्ड में ग्रो कर रहा है, आई थिंक वी शुड सपोर्ट दैट पर्सन। एंड कभी कभी एक लाइक, एक कमेंट या एक शेयर या एक एनकरेजमेंट मैसेज से किसी के लिए गिव अप का चीज़ नहीं होगा, वो कभी गिव अप करने का नहीं सोचेगा। उसको लगेगा कि नहीं, कोई है मेरे पीछे जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो वही चीज़ हमें हमेशा मतलब एनकरेजमेंट मिलता है कि हमें हमेशा ग्रो करे। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट ड्रीम बिग, स्टार्ट बाय स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी। आप कभी भी नहीं जानते कि आज का एक छोटा सा स्टेप आपको किस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी तक ले जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपका जो जर्नी है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, हमें बहुत अच्छी लगी है सुन के। और आशा करती हूँ हमारे जितने भी लिसनर्स है, यंगस्टर्स है, सभी को एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे कि पढ़ाई के अलावा भी हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ, हमारे स्टूडियो पे आके शेयर की, अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं आके मेरा एक दो जो भी थॉट्स है मैं शेयर कर पाऊँ। इनफैक्ट ये जो फील है, मैं आज जहाँ आपने मुझे बुलाया, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक अचीवमेंट है कि मैं आज यहाँ आ पाई हूँ। इट्स ऑल because of my page footstep by Lydia and thank you so much for having me here।
0: जी जी श्रोताओं, तो आज हमारे अतिथि ने अपनी जर्नी और एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर किए हैं। हमें यकीन है कि आज की जो बातचीत हमारे सभी यूथ लिसनर्स को अपने पैशन पर काम करने और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इसके लिए हम अपने अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे सभी श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हर नई शुरुआत छोटी जरूर होती है, लेकिन लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा उसे एक बड़ी पहचान दे सकती है। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। मैं थी आपकी दोस्त अंकिता, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान और नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी हाफलों के साथ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

श्रोताओं, युवा पर आधारित कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंकिता पॉल द्वारा एक खास बातचीत लिदीस जानमी के साथ। विषय था फ्रॉम ए सिंपल हॉबी टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए सुनते हैं आपको एक फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे समाचार प्रभात।

0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2000

0: 26 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की ये श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को, सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले की जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से रिली किए गए नॉर्थ ईस्ट न्यूज। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफड़ंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम शुरू की रंगोली। आज के शुरू की रंगोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर गायक मोहम्मद अजीज के कुछ सदाबहार गाने।

गायक मोहम्मद अजीज़ के कुछ सदाबहार गाने। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले की जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए पुवार आंचलिक बातरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
0: आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा भक्ति गीत मूल जनली जीते और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उलझन लीजिए और उनके साथियों के गाए खेलमा भक्ति गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है खेलमा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल भक्ति गीत जॉनी रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, जॉनी रांगखोल और उनके साथियों के गाए रांगखोल भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही समाप्त होता है रांगखोल कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत मलम भलंग प्रिंगे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, मैं लंबा लंग प्रंगे और उनके साथियों की गाई इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं ब्याते कार्यक्रम, सुनते हैं ब्याते पारंपरिक गीत छोंगपुया दारणी की आवाज़ में।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नहीं।
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
0: अरे
1: पड़ा।
0: खूब वाली पड़ी कि
1: अच्छा
0: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी। जब
1: उनकी पहली
0: सुमन पे
1: संतान यानी
0: बाप
1: आप
0: रे,
1: लोगों की सबसे बड़ी बहन।
0: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको यह था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूं, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई, अभी तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंसी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब
0: ये
1: हुआ?
0: इशारा हुआ 15 मई 1956, व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़िया पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
1: वाह वाह
0: मतलब एक जो
1: वाह,
0: लड़की आती है ना घर में
1: पिताजी
0: लक्ष्मी,
1: के लिए नसीब
0: वो
1: लाती है।
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर। तो
1: ये
0: ये
1: इशारा
0: उनको
1: था,
0: याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: 56, फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी बेटी।
0: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है, तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल, 14 साल,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना, उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
0: वो अलग
1: रेल,
0: अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी
0: जो हमने
1: जी
0: छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले हैं, अब तू उसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह
0: मांगा नहीं है, आप
1: वाह।
0: सोचो पूरी दुनिया मांग रही है, अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहां चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहां एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो

0: कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां
1: हाँ,
0: लिखी
1: बड़ा नटखट है तू,
0: कृष्ण
1: किसी दिक्कत
0: कन्हैया।
1: नहीं
0: क्या
1: है,
0: बात है, ये
1: क्या
0: गाना भी
1: करें।
0: बख्शी साहब
1: और
0: का
1: सर
0: है।
1: वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
0: हाँ
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना। सर ये क्या
0: वाह
1: लाइन है, आप सोचो
0: वाह
1: हम क्या
0: वाह,
1: क्या नहीं चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका हाथ मेरा होता,
0: क्या
1: इससे
0: बात
1: बड़ी
0: है।
1: दुआ है क्या दुनिया में।
0: नहीं
1: हाँ
0: नहीं
1: बी
0: क्या
1: माई फ्रेंड,
0: गजब का ख्याल है।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा आप राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना जैसा है यार।
0: वाह वाह वाह।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन इन माय जॉब. आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर. शाकिर खान, शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. ये सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना, मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूं.
1: गजब,
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माई वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लफ्ज बख्शी साहब के हैं, तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है,
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर
1: जोर
0: चलता
1: चलता नहीं,
0: नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: रो
1: पड़े.
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवन एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है, ये क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है, सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म. वाई वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस आर माई वर्ड्स, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उस ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज
1: बात
0: दिल
1: है,
0: पे कोई जोर
1: जोर
0: चलता
1: चलता
0: नहीं,
1: नहीं.
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: क्या
1: एक बार
0: क्या
1: हमारे घर
0: बताओ।
1: में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता। तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: है, हमारे हॉल में थी रविंद्र टैगोर की फोटो। ही सेड, टैगोर ने कहा है, द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा, यू विल नॉट स्माइल, टीयर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते
1: और
0: हैं।
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो और आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया
1: अरे
0: था,
1: कमाल है वो तो।
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए, सेकंड टाइम पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो? वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका
0: जी
1: हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार है ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी आपकी। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप, तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इधर इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे।
0: बोरीवली में
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
0: तो
1: और
0: चित्रमल
1: जिंदगी भर
0: स्वरूप
1: मरते
0: जी,
1: तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से कभी।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए।
1: हाँ
0: अब एक आसरा हो गया, यहां
1: हाँ
0: से स्ट्रगल किया जा सकता था।
1: हाँ
0: मैंने
1: करेक्ट।
0: सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू द वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, रोशन
0: बिल्कुल
1: साहब,
0: बिल्कुल
1: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। रोशन साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहां चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन दबाए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
0: पागल हो
1: इतनी
0: गया।
1: बरसात में क्यों आए तुम, इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
0: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या।
1: हाँ तुम पागल हो क्या तुम। इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
0: क्या
1: वो
0: बात
1: साला
0: है।
1: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारे ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ, तो
0: हाँ
1: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
0: वाह वाह वाह वाह, यहां से
1: और
0: शुरू होता
1: बेदाग
0: है
1: के गाने क्यों जरूरी हैं,
0: जी।
1: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता। हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
0: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
1: तो
0: उसमें बख्शी साहब को बीच
1: जब
0: में मौका
1: राजेश
0: मिला।
1: रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
0: वाह वाह,
1: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। वो बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शा गाने लिखना भूल गए हैं, लेकिन जब बख्शा ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शा साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन,
0: कितनी
1: इतना
0: इज्जत।
1: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
0: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो
1: देवर,
0: जालिम, गुजरा जमाना
1: हाँ
0: बचपन का।
1: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
0: जी।
2: आ

0: तो ये अलग ही मिट्टी के लोग थे,
1: बिल्कुल
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर
1: जी
0: बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे, महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको
1: हाँ
0: पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे।
1: साहब की तरह
0: तो सीधा अगर पहले लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया था निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम, इसे मैं फौजी हूं और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई, बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए, हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, इसको बहुत पसंद आया। बोला रे वाह, तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी से लिख के लाया,
1: अरे
0: तीनों का चारों गाने लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने, हाँ
1: जी
0: सुनाओ, सुना रिकॉर्डिंग होगी उसकी
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने गए, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ
0: पता
1: कि
0: चलेगा
1: उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म
0: वो
1: मिली।
0: उनकी पहली हिट थी,
1: जी
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे, उससे पहले एक और हिट थी चांद सी महबूबा, उसमें
1: हाँ,
0: सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे लेकिन,
1: एक दो गाने थे
0: हाँ
1: हिमालय की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था,
1: जी
0: जबरदस्त चला था ये गाना, मनोज कुमार जी टोल्ड मी, ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ।
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: हाँ, और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले,
1: हाँ
0: सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।
2: मेरे सपने की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस आए और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के, कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज
0: कभी
1: दो,
0: नहीं, कभी नहीं।
1: रिजॉर्ट में
0: उनके
1: भेज
0: मुझे, अरे
1: दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तो इस लड़ाई के बीच में बैठ
1: गाने
0: के
1: लिख
0: गाने लेकर रहा हूँ।
1: रहा
0: कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लेकर रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशियंट फॉर माई प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलोसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटेस्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे,
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत
0: तुमने
1: करते
0: तीन
1: थे।
0: मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3 4 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30 30 अंतरे लिख के
0: या
1: देते
0: या
1: थे कि
0: जब
1: आप
0: हम
1: इसमें
0: जवां
1: से चुन
0: होंगे
1: लो।
0: जाने कहां होंगे, 59 अंतरास।
1: अरे बाप रे, 59!
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहरी है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था, ही वॉज
1: जी
0: अ जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोले आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे, और ये लोग जाते थे बर्ली सी फेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे।
0: हाँ,
1: अरे
0: बर्ली सी फेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे। उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर हनबख्शी वॉज, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे।
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की
0: यस यस।
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे।
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, एकदम इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारी जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का?
1: मैं खुश हूं, मेरे आंसुओं पे ना जाना,
0: हाँ
1: मुबारक हो तुमको समा
0: हाँ
1: ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू यू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।
2: मुबारक हो सबको समाये सुहाना,

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मैं 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70 हजार मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70 हजार रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता। मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है। एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको
1: कोई
0: लोग बोलते थे, अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो ये अराइव्ड, यू नो, जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड, पता नहीं
1: हाँ
0: हिंदी में क्या उसका मुहावरा है,
1: कि कामयाब हो गए भाई, आपका तो
0: अरे बड़े
1: डंका बज
0: कामयाब हो गए
1: रहा।
0: आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो इष्टू रबिश शेट, यू नो, कि नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया, खत्म हो जाऊंगा। उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था।
1: जी
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह,
0: तो मैं बख्शी बॉस जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: レ、ソール。
1: ババネ、サレ、ショール。
0: あれ、ババショールね、ソール、ソール、ソール。

0: पक्षी साहब, जो सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है, तो आप ट्राई यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सियानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सियानी। तो शैलेंद्र बोला, देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको तो उर्दू वाज़ अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो, जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज, मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे यार करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

मुझ बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

0: और फर्जी इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि सर यार सुरेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर अनबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। चलो शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर,
1: पृथ्वी आमा।
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंदा का।
1: भूले छी निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है, इसे क्या कहेंगे? आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं?

मधु मुखर्जी के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं ये पारंपरिक रचना, आवाजें आशा भोंसले और भूपेंद्र की।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
0: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
0: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
0: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: अनुराधा पौडवाल की आवाज में हम आपको संत कबीर का भक्ति पद सुनवा रहे हैं। धुन बनाई है शेखर सेन ने।

अभी आपने अनुराधा पौड़वाल की आवाज में संत कबीर का ये भक्ति पद सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम, आवाज बेगम अख्तर की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत और ये विवा ग्रुप की पेशकश है।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सईद राही का कलाम, आवाज घनश्याम वासवानी की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आवाज मिताली सिंह की और गुलजार साहब की ये रचना है।

0: और अब आज का रंग तरंग
1: कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 12:05 से। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू

0: देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, एसपी बालसुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मिया, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजी। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: फिल्म वास्तव का गीत, सुनिए गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे के बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी

0: बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हो गया है उस दिन से, न आसमां अच्छा लग रहा है, न जमीन भा रही है। ये कैसी बेखुदी है, कैसी ये तन्हाई है। देख ली तेरी खुदाई ऐ ऊपर वाले, बता कितना और तड़पना अभी बाकी है। जी हाँ, यह है इबारत और इनमें कुछ चीजें, कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आज के गीतों से जुड़े हैं। हालांकि हमने कुछ शब्दों का जिक्र आपसे नहीं किया है, इस इबारत को पढ़ने के बाद आपको कुछ गीत अपने आप पता चल जाएंगे कि कुछ कुन किन गीतों को आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए, लेकिन ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड या LP और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था परवाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सबसे खास ऐसे गीतों की बारी है जो किसी कारणवश फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाई दिए पर ऑडियो हमेशा सुनाई पड़ा। जैसे एक गीत जिसका प्रिंट जल गया था लेकिन उसी फिल्म का गीत ये दिल और ये उनकी निगाहों के साए हमेशा सुनाई पड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से तो लगता है कि सभी गीत एक से बढ़कर एक होंगे और ये गीत अगर आपकी लिस्ट में मिल भी जाते हैं तो कहना ही क्या। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से जहां प्यार है वहीं गमों की शाम की पीड़ा भी है, इंतजार के लम्हे हैं तो सूनापन भी है। हर पलों में इन शब्दों से भावनात्मक रूप से हम जीवंत हो उठते हैं। प्रकृति की खूबसूरती भी आज बेमानी लग रही है, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। ये सभी गीत उन्होंने लिख भेजे हैं और कहा है कि शायद इन गीतों को फिल्मों से हटाया गया था। आप लिखते हैं कि आज इबारत में बहुत ही खूबसूरत शब्दों के मोती हैं और गीत बड़े ही मनमोहक लगने वाले हैं, ऐसा आपका सोचना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म की लंबाई की वजह से कई ऐसे मशहूर गाने पर्दे पर नहीं आ सके लेकिन उन्हें आज भी बड़े ही चाव से सुना जाता है। इस संदर्भ में कहीं और चल नाम से एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गीत था डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, बाद में ये फिल्म से जो है गाना हटा लिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे गाने हैं जिनका जिक्र आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत बिछड़ने के, कुछ यादों में आने की दुनिया जहां से निराश होने की एक ऐसी फिल्म है जो कोर्ट के आदेश से हटा दी गई थी लेकिन उसके भी कुछ गाने ऐसे थे जो बाद में काफी लोगों को पसंद आए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कब से चाह रही थी कि आज आप खास इस टॉपिक पर एक इबारत ऐसी बनाएं जहां पर इस तरह के गानों का जिक्र हो। लगता है आज आपने बिना कहे ही, मेरे कहे बगैर ही मेरे दिल की बात सुन ली है। आज इस प्रोग्राम में नई जानकारी के साथ कुछ खास गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाए गए वो गीत, लेकिन उन्हें आज भी हम याद करते हैं और विभिन्न कारणों से अपने कालखंड में वो गीत नहीं बच पाए या नहीं सुनाए गए लेकिन हमने उन गीतों को आज भी अपने दिलों में बसा रखा है। पूरी संभावना है कि इबारत के माध्यम से आज उन गीतों का जिक्र होने वाला है क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनका चयन फिल्मों से निकाल दिया गया था लेकिन उनको आज भी हम सुना करते हैं और पसंद किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं जिनके गाने ऑडियो और रेडियो पर रिकॉर्डिंग के बाद सुपर डुपर हिट हुए लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने या अन्य कारणों से उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कुछ गाने हम विविध भारती से सुनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की थीम बहुत ही अच्छी है, ऐसे गाने सुनने

बहुत ही कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों का जिक्र होगा जिन्हें हमने पर्दे पर नहीं देखा लेकिन उन्हें सुना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म महबूबा का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। क्लासिक गीत है ये, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था महबूबा। और अब आपसे करते हैं दो सवाल हमेशा की तरह। आज का विषय क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है, और हमारे सभी श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें गलत जानकारी भी मिल जाती है। बहुत सारी खोज के बाद ये पता चलेगा कि कौन से गाने फिल्मों में रखे गए और कौन से हटा लिए गए। जैसे कि फिल्म महबूबा का गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए जब हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो पता चला था कि इस गाने को जो है फिल्म की लंबाई या कहानी की जरूरत के कारण, मतलब कहानी की जरूरत में ये गीत नहीं फिट हो रहा था, तो वहाँ थिएटर में प्रदर्शित अंतिम कट से इस फिल्म गाने को हटा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से हटाया गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गीत, किसी एक गीत का नाम आपको लेना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल आपको बताने हैं जो आपको पसंद है, और वो गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाया गया था। वैसे हमारे श्रोताओं ने हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना है आपकी पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक, और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये सावन की घटा और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं, एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए, जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहाँ जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रति

अपेक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं, पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी, तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है। आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और SH बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी, इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया। पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया, उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है। तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, SH बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10 जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था, ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशाताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे, इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते ही गीत दिखाया गया था इस फिल्म में लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी। ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर, फिल्म आया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान ने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना, खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है, जो फिल्म में नहीं रखा गया वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: इसे दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद N.K. प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा

0: संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
4: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है। कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन
0: ऑफ टेंशंस। श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
7: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंतिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें आज।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि
1: हम
0: हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है, वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है,
1: जी
0: परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का।

0: ये रखनी चाहिए कि
1: हाँ
0: जो सबकी बोलने की आदत होती है,
1: जी
0: समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहां जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता
1: जी
0: है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां
1: जी
0: पर, क्योंकि जरा सी भी बातचीत से उनका
1: ध्यान
0: असंतुलन होता
1: विचलित
0: है, ध्यान
1: जी
0: विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या
1: जी
0: कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल
1: हमारा
0: रखते हैं,
1: ध्यान
0: और
1: रखते
0: वो
1: हैं
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की।
1: जी।
0: और
1: और आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल, जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल।
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है, पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनाली, एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस, या फिर और कुछ?
1: साड़ी
0: साड़ी
1: पहनना बहुत पसंद
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी, और पहनती
0: और
1: भी हैं बड़े शौक
0: मौकों
1: से
0: पर शौक से पहनती हैं।
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे, क्योंकि साड़ियों
1: कसाऊ
0: का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है,
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और शब्द बहुत अहम होते हैं, कि
1: बहुत अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते
1: नहीं
0: हैं,
1: आते
0: तो इसलिए जब भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही है ममता जी, कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हो, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: और व्यंजन
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है
1: और व्रत के
0: प्रोग्राम।
1: व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन भी हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: हाँ, मखाने की
0: और
1: खीर बनती है
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं,
1: जी।
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: अब गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।
0: जी
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है,
0: जी
1: आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे, उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ,
0: जी
1: बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी
1: जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो
0: जी
1: उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे।
0: जी और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं, संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है,
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है।
1: तो सुने वही गाना।
0: जी

आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ में, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू।

0: मक्का जी,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी
1: हाँ
0: वाइफ।
1: अच्छा
0: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं।
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते बाघिन।
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो दो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और
0: घर
1: डर
0: में उपस्थित,
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसावो का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
0: बहुत महंगी
1: तो
0: हो जाएगी,
1: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए कि वो ना ही लगे तो अच्छा है
0: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
1: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
0: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
1: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां
0: पहन
1: पर
0: के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना, फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है। तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: अब
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
0: जी
1: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है। और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
4: अरे मन बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है। इससे बचना चाहिए।
4: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है, इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपने आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
0: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था, कागज पर पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं, महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
4: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है, तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
0: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारे, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है, वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
4: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी,
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो
1: जी
0: सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है,
1: जी
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या। और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं, तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी,
1: जी
0: तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहां पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं
1: जी
0: कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है,
1: जी
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें, तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे
1: जी
0: हैं। व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
1: चिरौंजी
0: और
1: जी
0: बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी, और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे ममता
0: अरे
1: जी।
0: वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले, और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए, और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले, और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मेरे मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते
1: जी
0: हैं और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है,
1: जी
0: अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोले तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोले, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर
0: कई
1: वो
0: बार
1: बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलती
1: जी बोलना ही पड़ता है
0: हैं
1: आजकल
0: नहीं तो
1: के छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है, इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं। और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है,
1: जी
0: आदर के लायक
1: कमाया
0: होना,
1: जाता है।
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है।
1: जी
0: आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: जी एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है, इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है, जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं और
0: नहीं आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रही हैं
1: जी एक
0: तो।
1: साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है,
1: जी
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हों या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना,
1: हाँ
0: लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे।
1: जी और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए,
1: तो गाना सुनते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन
1: पर
0: बिल्कुल
1: रुकना
0: वक्त नहीं।
1: पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है, शाम को 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सके। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में और संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद डॉ. राम मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि पिछले 123 वर्षों से वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गीत से प्रेरित होकर देश के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। YSRCP के गोल्ला बाबूराव ने सदन के सभी सदस्यों से राष्ट्रगीत का सम्मान करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस चर्चा में बीजेडी की सुलता देव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, AIADMK के डॉ. एम थंबीदुरई और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा से बात की और असम के ऊपरी हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सरमा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री ने दोहराया है कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार की सभी एजेंसी और संसाधन असम के लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में कई समुद्री जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए एक बार फिर से सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
3: इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक। विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
4: मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होकर 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता।

0: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं। मैं भी उनके साथ पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था
1: वाह वाह,
0: वो
1: हाँ
0: दौर। लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब वो अब वापस नहीं
1: हाँ
0: आएगा।
1: सच सच बात, सच बात।
0: बहुत मजा आता था
1: तब
0: उस टाइम
1: जिंदगी में
0: पे,
1: एक सादगी थी
0: सच
1: और
0: में,
1: सब लोगों का साथ था।
0: सच में, सच
1: हाँ,
0: में,
1: और बहुत खुशी थी।
0: बहुत
1: हाँ,
0: खुशी थी।
1: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं,
2: हाँ,
1: लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
2: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
1: अब ये हमारी चॉइस की बात है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा, अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना, तो
2: ये
1: ऐसा
2: बड़ा
1: होता है कि
0: मुश्किल हो
1: अरे
0: जाता है।
1: कौन सा मेरे को
0: हाँ
1: कौन सा
0: सुना है,
1: पसंद
0: हाँ
1: है।
2: बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं, रोशन।
1: तुम
2: तुम अगर
1: मुझको
2: मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। एक बहुत
1: और
2: प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है, शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने तो।
1: हाँ, क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई है।
2: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।
1: चंद

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात, सही
0: जो
1: बात।
0: भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है
1: यस
0: जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और
1: जी
0: बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना।
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा
1: कबाल
0: गाना भी
1: हाँ
0: उन्होंने गाया
1: हाँ
0: है कि
1: हाँ
0: नहीं?
1: यस यस यस हाँ
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब
1: हाँ
0: ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र कृष्ण क्या लिखते
1: एग्जैक्टली
0: हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: जी मुझे कहते हैं, मुझे

0: रहेगा।
1: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक
0: नहीं
1: तरफ उनके गानों में रूमानियत है,
0: हाँ
1: दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी
0: हाँ
1: उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में
0: हाँ
1: बाकायदा आते हैं।
0: है
1: लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है,
0: हाँ
1: मजरू साहब का ये गाना।
0: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे।

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं, जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: उनके थ्रू ही मैं गया था, उनके साथ आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी,
2: और म्यूजिक डायरेक्टर

0: उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलूकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है।
1: जी
0: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता, जैसे गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया जाए, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो कि क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो,
1: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
0: ठहराव नहीं है।
1: ज्यादातर गानों में आत्मा
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: नहीं है।
1: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है,
0: अच्छा
1: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
0: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट
1: इसीलिए
0: गया। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
1: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
0: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सी रात,
1: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
2: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था,
1: तब तक ये सोच,
2: उनको ये गाना है
1: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
0: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से।
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: क्या बात मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात गा सकते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम

0: रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना
1: हाँ
0: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में भी नहीं
1: अच्छा
0: आती, बोलती तुम भाई तो
1: ओके
0: गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं आता, इसलिए वो आती भी नहीं है। और एकदम रेयर सुनेगी वो
1: अच्छा
0: अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का, एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है कि
1: अच्छा
0: भी सुनो सुनो सुनो,
1: बिठा
0: क्योंकि
1: के
0: सुनना पड़ता है। हाँ घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता
1: ये मजेदार है। अच्छा कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
1: लेकिन आजकल बहुत रिमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रिमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: ये मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं, या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें उन लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें
0: वेस्टर्न,
2: मजा आ
0: हाँ
2: रहा हो डांस कर रहे हैं उसमें। क्या
0: वेस्टर्न
2: मजेदार
0: डाल
2: बात
0: दीजिए
2: है।
0: ना,
1: मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जायज हो
2: और
1: जाए,
2: उसके अंदर
1: रॉक
2: डांस
1: हो
2: कर
1: जाए,
2: रहे
1: उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ
2: हाँ
1: जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह
2: हाँ तो
1: से।
2: शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया होगा, भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय
1: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल
0: है।
1: देने के बारे में?
0: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप, आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल की जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, वो ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल।
0: भाई
1: आज
0: चलो
1: इतने
0: अभी ये चल
1: बरस
0: रहे हैं।
1: बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं
0: हाँ
1: जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा
0: बचा
1: है,
0: के
1: और
0: रखा
1: दिन
0: है,
1: रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: हाँ
0: करेक्ट
2: बिल्कुल। और
0: करेक्ट
2: शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते
0: बहुत
2: हैं।
0: अच्छे लगते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे
2: यस
1: हैं,
2: यस यस
1: है
2: यस
1: ना?
2: यस
1: ये
2: देखा
1: जो है
2: मैंने।
1: कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
1: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है ऐसे, ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
1: जी जी
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
1: बिल्कुल
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया।

0: इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
0: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
0: मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
0: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है,
1: आम जनता के बहुत चहेते
0: बहुत
1: गायक हैं।
0: चहीते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने
1: हाँ
0: बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: बच्चा
1: गुजरात के,
0: दामाद
1: है
0: बिल्कुल दामाद
1: ना।
0: है, यस
1: उनकी जो
0: बच्चे।
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे
0: हाँ
1: उनकी शादी हुई थी। और
0: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
0: यस
1: उन्होंने
0: बताइए
1: घर
0: यस
1: वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी
0: खिलाफ
1: की
0: जा
1: थी
0: के।
1: सरल वेन के
0: हाँ
1: साथ।
0: जी, अब देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए
0: गुजराती
1: उन्होंने
0: गाने भी
1: और
0: बहुत
1: आज
0: सारे
1: इनफेक्ट
0: गाए।
1: जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन है।
0: हाँ
1: जन्मदिन है,
0: बिल्कुल,
1: क्या
0: ये भी
1: बात
0: बहुत दिलचस्प बात
1: है।
0: है।
1: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा,
0: हाँ मेरा ख्याल
1: फोर्टी
0: है शायद
1: सिक्स में,
0: कितनी
1: फोर्टी
0: हाँ,
1: सिक्स में
0: और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
1: 23 साल। हाँ
0: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
1: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के तो फिर हम
0: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो
0: एक
1: गाएंगे।
0: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: क्या तमे,
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
0: जी
1: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है
0: ओ
1: ना, वहां
0: बिल्कुल,
1: शोज भी उन्होंने काफी सारे
0: काफी
1: किए।
0: सारे किए
1: कई
0: हैं।
1: लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
0: एग्जैक्टली
1: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल
0: यस।
1: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
0: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
1: अरे बाबा क्या बात है,
0: हूं
1: जरूर।
0: मारा भोड़ा दिल नो

0: दिलनो हमारा भोड़ा दिलनो हाय रे शिकार करीने चालिया गया आंखों थी आंखों चार करीने बीमार करीने मारा भोड़ा दिलनो।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया।
0: अलग जी
1: गुजराती गाने हमने सुने। ये जो
0: गया।
1: आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी
0: जी
1: कभी हो।
0: जी
1: ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके,
0: हाँ
1: उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए। हाँ
0: जैसे मुक्ति
1: हाँ अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना,
0: हाँ सोलह
1: एक
0: गाने हैं।
1: हाँ एक फिर कब मिलोगी भी है।
0: हाँ
1: हाँ
0: लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे पांच ही गाने हैं, जो
1: अच्छा
0: 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने,
1: हाँ हाँ हाँ
0: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी
0: मुक्ति।
1: रातें।
0: हाँ

0: अब्बाद है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूँ मैं तेरा, हुस्ने

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है कई दशक के बाद। साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इस इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

0: जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए,
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना, या
0: हाँ, हाँ।
1: कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है, एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है,
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है।
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है, तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था। ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फलां शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है,
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं।
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं?
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं, शायद हाँ, हाँ, के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए,
0: हाँ।
2: तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लेंगे फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ? फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए, तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे ममूस एरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या जबरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देते हैं।
0: सबसे पहले तो अपना
1: मोबाइल म्यूट रखना
2: वो
1: चाहिए,
2: तो जरूरी है,
1: डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी।
1: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको वो पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली,
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ,
0: हाँ,
1: जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ, दीवानों से ये मत पूछ।

0: हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालुमा।
1: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूं जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
2: ऑलरेडी आप कर चुके हो
0: कब से
2: वैसा।
0: सोच रहा हूं मैं ये चीजें कि अभी तक
1: अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
2: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
1: हाँ।

0: रहूं।
1: लो भाई गोविंद। हाँ एच है। हाँ
0: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के
1: ये
0: जिसके बादलों

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।
0: राम।

0: क्या प्यारी बात है। इसी
1: वंडरफुल।
0: स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं योगेश जी आए थे और
1: हाँ
0: उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे
1: अच्छा
0: सुनाई थी।
1: वाह
0: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है।
1: जी
0: और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी
1: हाँ
0: हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि
1: जी
0: उनकी अंताक्षरी भी खेलें अपने घरों की महफिलों में,
1: जी
0: अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ
1: बहुत
0: आने के
1: बहुत
0: लिए।
1: शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी,
2: बिल्कुल
1: विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा
2: आप,
1: करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं,
3: थैंक
2: और
3: यू।
2: उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा
1: यस
2: और गाया
1: बिल्कुल
2: जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम आज की हमारी दूसरी सभा में।

अब से कुछ ही देर में 6:05 से दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत आप सुन पाएंगे मार कार्यक्रम। आज रालसियन थंग वांकल और साथियों की आवाज़ों में आप सुनेंगे मार आधुनिक गीत। जैमी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:25 और आज आप सुनेंगे लोकगीत। गायक कलाकार आज हैं चेलुंगले न्यूमे और उनके साथी। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे आंचलिक बातोरी 6:45 पर। समाचार के बाद दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए 7:00 आप सुन पाएंगे डिमासा कार्यक्रम। आधुनिक गीत आज आप सुनेंगे लानी देका और साथियों के गाए। उसके बाद कार्बी कार्यक्रम में भक्ति गीत 7:20 पर आप सुन सकते हैं आज शेडुअल हंसे और साथियों के गाए। 7:40 पर समय रहेगा कुकी कार्यक्रम का। कुकी आधुनिक गीतों का आनंद आप लेंगे। आज गायक कलाकार हैं थियम खोहोय लियानथांग और साथी। दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के बाद 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। रात 8:30 पर फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे। समाचार संध्या आप सुन पाएंगे 8:45 पर। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं 9:00 समय रहेगा नेपाली गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:00। आज कुछ आधुनिक लोक संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रगीत 9:30 से।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र आपने ट्यून किया है श्रोताओं। अब आइए हम आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम। सबसे पहले दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे मार कार्यक्रम। आधुनिक गीत गायक कलाकार हैं रालसियम थांग वांकल और साथ ही

मार आधुनिक गीतों का आनंद आप ले रहे थे श्रोताओं। गायक कलाकार थे रालसियम थंग वंकल और उनके साथी। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और अब बारी आती है जेमी कार्यक्रम की। आइए सुनते हैं हम लोकगीत। गायक कलाकार हैं चेलुंगले न्यूमे और साथी।

0: श्रोताओं, जैमी कार्यक्रम में लोकगीत का आनंद आप ले रहे थे चिलुंगले न्यूमे और साथियों की आवाज़ों में। आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। समाचार के बाद भी आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे आंचलिक पातोरी।
1: सोलर पैनल लगाए लो केतेबार पर मक हकलुए कय आसिल किंतु म तेतिया हे बिचार कइलो जेतिया स्वयं प्रधानमंत्री कले
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मय प्रधानमंत्री कथा खुनी सोलर पैनल लगालु आरो मोर बिजुलीर बिल शून्य आहिल आपुनियो लगाए लोक।
3: पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना आजिए पंजीयन करक। पीएम सूर्य घर.gov.in

श्रोताओं, डिमासा आधुनिक गीत आप सुन रहे थे, लानी देका और साथियों की गाए। इसी के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और अब आकाशवाणी के हाफ लॉन्ग केंद्र से स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम। भक्ति गीत हम सुनेंगे शैडोविल हंसे और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शेडोवेल हंसे और साथियों की आवाज़ों में भक्ति गीत कार्बी कार्यक्रम में। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। अब समय है कुकी कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं आधुनिक गीत। गायक कलाकार है थियाम खोहोई लियानथांग और साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे थ्याम खोहोय लियान थांग और साथियों की आवाज़ों में कार्बी आधुनिक गीत, माफ़ कीजिएगा, कुकी आधुनिक गीत कुकी कार्यक्रम के तहत। और अब इसी के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कुकी कार्यक्रम के साथ ही समाप्त होती है आज की दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:31 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। आज हम सुनेंगे गायक कलाकार मोहम्मद अजीज़ के बेहतरीन फिल्मी गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों की रंगोली का आनंद आप ले रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे थे गायक कलाकार मोहम्मद अजीज जी, उनके गाए कुछ बेहतरीन फिल्मी गीतों को हम सुन रहे थे। आज के लिए कार्यक्रम सुरों की रंगोली यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब बारी आती है फिल्मी गीतों का। कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहला गाना आइए सुनते हैं हम बादशाह फिल्म से। इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने, समीर के बोल है, अनु मलिक का संगीत।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में दिल चाहता है इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत, जावेद अख्तर के बोल। आगे सुनते हैं ये गाना।

0: पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
5: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
6: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
7: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
8: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
9: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है नेपाली गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं नेपाली गीत। इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत का आनंद आप ले रहे हैं। आइए

श्रोताओं, कुछ आधुनिक नेपाली लोकगीतों का आनंद हम ले रहे थे आज के नेपाली गीतों के कार्यक्रम में। आज के लिए ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं।

0: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत। पहला गाना आइए सुनते हैं हम सोनू निगम और सौम्या राव की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दम।

कल हो ना हो इस फिल्म का गीत आपने सुना शंकर महादेवन, रवि खोटे और साथियों की आवाज़ों में। शंकर एहसान लॉय का ही संगीत था और जावेद अख्तर के बोल थे। आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से चित्रगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं श्रोताओं। आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को गाया है मरियम चिन्मयी और कृति सगाटिया ने। फिल्म का नाम है गुरु। ए आर रहमान का संगीत है।

श्रोताओं, मोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ें थी और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, विजू शाह का संगीत था। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ ही आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होते हैं। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज चुके हैं। आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल पहली सभा के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।